0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
2: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
1: ए हो त, कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
2: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
1: अब त म ढुक्क।
3: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
2: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26। जमरापारी टीकापुर कैलाली।

0: होंडा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौं। स्क्र्याच कुपन मार्फत 1,00,000 जित्ने मौका। चुज एनी वन स्किम अन्तर्गत थप्रो 10,000 स्क्र्याच कुपन, 7 वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्षसम्म एएमसी र होन्डा साथ अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होन्डा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आजी था, कहा कना हो, कहा कना हो। बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर भर थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुंगी।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: हेलो बहनी, कता हो तिमी, था कि नहीं सीजी कंपनी को वाई वाई जिंक 15 रुपया में एक पेटी रूपान 60 में उपहार सहित एक कचौरा पनी पाइन छा, तिमीले कति में किन्यौ?
4: मैले त एक पेटी चाउ चाउ रु 600 में किने।
3: 600 रुपया किन हाल्नु पर्यो? 560 में त ब्लक नंबर 14 में रहेको हरिलाल किराना पसल में रु 15 वाला चाउ चाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कंपनी को गुणस्तरीय चाउ चाउ, र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउ चाउ र 35 को चाउ चाउ रु 2500 रुपया में आउँदै छ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ, फेरि 500-600 रुपया वाईवाई मै किन हाल्ने, 460 में मामा चाउ चाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाईवाई सीजी कंपनी को, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ, भुलेर पनि अरु ठाउँमा नजानुस् है, होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वांटिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ, आधिकारिक विक्रेता
4: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर सैलाली, संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 98484022141।
5: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर, अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
6: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
7: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू,
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो, यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
8: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: उसी ईमान के साथ।
1: आई लव द सेंट,
0: आई लव इट टू। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान 9 बजे के थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रहीन स्वागत बा। खोज खबर से छपिलाल चौधरी के राम राम। अब अपनी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुन्ती बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कांग्रेस सभापति में गगन कुमार थापा विजय और पदाधिकारी के भर आज दिनभरी में मतगणना शुरू हुईना। समन्वय के अभाव में ढेर समस्या थाती रहल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के मंत्री व स्थानीय तह के गुनासो समन्वय हुई पर्ना सरोकार वालाओं के सुझाव। मुक्त कमैया आधारभूत विद्यालय विजय नगर के सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई विद्यालय के शैक्षिक उपलब्धि 68.79% केल। ओ जनजागृति मावी सीतापुर में आठ जान विद्यार्थी हुक्रहीन है इंदिरा चंद्र छात्रवृत्ति वितरण कई गेल। नेपाली कांग्रेस के सभापति में गगन कुमार थापा विजय भिलबाट 15 महाधिवेशन अंतर्गत हुई निर्वाचन में थापा 6584 मत लेके मत पैती सभापति में विजय हुईलक हुई। सभापति पद के और उम्मीदवार श्याम कृष्ण खड़की 375 मत पाइलबाट कलशे कुल मत 7013 मत खसल निर्वाचन में 54 मत बदल हुईलबा। कुल खसल मत के आधार में थापा 93.88% मत पाइलबाट खड़की 5.35% मत पाइबेर 0.77% मत बदल हुईलबा। थापा खड़की से 6209 मत ढेर पाइलबाट और पदाधिकारी भर आज दोपहर से मतगणना शुरू हुईना बा। यी आघ कांग्रेस के 14 महाधिवेशन में महामंत्री में निर्वाचित हुईलक थापा पार्टी भीतर नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक सुधार के अभियान में सक्रिय हुई जल है। 3 तह के सरकार बीच समन्वय के अभाव में आम ही ढेर समस्या समाधान हुई नहीं सकल बताइल बा। जिला समन्वय समिति कैलाली के आयोजना में काल धनगढ़ी में हुईलक स्थानीय तह के आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक प्रगति समीक्षा व असल अभ्यास संबंधी अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम के सहभागी हुक्र असीन धारणा धरल हुई। कार्यक्रम में बोलती सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्री संतोष शर्मा थापा तीनों तह के सरकार बीच समन्वय हुई नई सकल गति समन्वय हुई में जनता के साझा समस्या समाधान हुईना वो विकास के गति लेना बतैलबाट। कार्यक्रम में बोलती आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री खुशीराम डंगौरा थारूफे 3 तह के सरकार के प्राथमिकता सुशासन सहकार्य सहअस्तित्व हुई परनाम जोड़ दहलबाट। कैलाली के प्रमुख जिला अधिकारी हीरालाल रेग्मी विकास निर्माण करबेर शांति सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के विषय फे ख्याल कर पर्ना बटैलबाट। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री जानकी देवी कुंवर जिला समन्वय समिति प्रदेश सरकार और स्थानीय जोड़ना कार्यक्रम के दूरी घटी गैलक वहां बटैलबाट। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री इंदिरा गिरी 3 तह के समन्वय कई का काम करलसे देश हाली प्रगति करना वो स्थानीय विशेषता अनुसार के विकास कर पड़ना वो विकास आयोजना संचालन कर बेर प्राकृतिक संपदा के संरक्षण करलसे केल दिगो विकास होना बटैलबाट। कार्यक्रम में स्थानीय तह आर्थिक वर्ष 2082-83 में करल काम के प्रगति विवरण सुनैती असल काम हुकन के विवरण फे प्रस्तुत कई गिलबा। कैलाली के 13 स्थानीय तह मध्य लमकी चौहान नगर पालिका प्रगति समीक्षा कार्यक्रम में सहभागी नई हुई हो कलसे धनगढ़ी उपमहानगर पालिका गौरीगंगा नगर पालिका तैयारी नई पुगल कति प्रगति पेश नई करला। स्थानीय तह से वित्तीय समानीकरण अनुदान घटनाक्रम में रहल संघ से संचालन में अलग योजना समय में नहीं बनल स्थानीय तह से पठैलक संगठन सर्वेक्षण भू उपयोग योजना जसिन प्रदेश से पास कर पर्ना विषय आघ नहीं बढ़ल पालिका पालिका बीच सीमा विवाद हुईलक वन भीतर के ताल हुकन के स्वामित्व के विषय प्रश्न नहीं हुईलक प्रदेश और पालिका के बेरजू बहरती गैलक लगायत के ढेरनक समस्या रहल बटैल बाट पालिका प्रमुख हुकन के उहर से जाने की गांव पालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी जनप्रतिनिधि ओ कर्मचारी मिलके आवश्यक काम कर पर्ना ओ हुईलक जनशक्ति प्राकृतिक स्रोत के सदुपयोग करती समृद्धि हासिल कर पर्ना बटैल बाट जिला समन्वय समिति कैलाली के प्रमुख टीका कुमारी चौधरी भूल स्थानीय तह से करल असल अभ्यास निरंतरता देती और ढेर बाकी काम पूरा कर पर्ना बटैल बाट कार्यक्रम में स्वागत उप प्रमुख खगराज भूषाल करलदलह कलश संचालन विमल प्रकाश जोशी करलदलह ओ समन्वय समिति के निमित्त समन्वय अधिकारी जनक ओखेड़ा धन्यवाद ज्ञापन करलदलह मुक्त कमैया आधारभूत विद्यालय टीकापुर दुई विजयनगर के सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई हुई बा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम में सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करती शिक्षिका नैना चौधरी शैक्षिक सत्र 2082 में शैक्षिक उपलब्धि 68.79% रहल जानकारी करैलबाट विद्यालय में 88 जना छात्रा ओ 69 जना छात्र कैके जम्मा 119 जना विद्यार्थी रहल उहाँ जानकारी करैलबाट शैक्षिक सत्र 2082 में 227 दिन विद्यालय खुलल 211 दिन पढ़ाई हुई बा शैक्षिक सत्र के 35,77,247 रूपया के आय व्यय सार्वजनिक कैगिल बा सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन सुन सकल पाछ सहभागी हुकरा आपन तर्क से आपन ओर से सुझाव देहलबाट टीकापुर नगरपालिका के शिक्षा समिति सदस्य तथा कालिका आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक जोगी रावल सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय के अवस्था संतोषजनक रहलसे फे ढेर कुछ बात सुधार कर पर्ना बटैल बाट शिक्षक अभिभावक संघ के पूर्व अध्यक्ष हेमा चौधरी यहाँ के बाल बालिका हुकन के लाग ई विद्यालय भारी दुख से स्थापना करल स्मरण करती अब विद्यालय के अभिभावक विद्यालय में नहीं आई बेर ढेर दुख लागल बटैल बाट विद्यालय के संस्थापक व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जीत बहादुर चौधरी विद्यालय में अभिभावक के उपस्थिति कम हुईना विषय में अभिभावक शिक्षक तथा विद्यार्थी हुक्रहीन एक ठाव में धैकर छलफल कर बेर कुछ सुधार हुई सेकना सुझाव देहल बाट टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत नरेश अवस्थी विद्यालय में विद्यार्थी बढ़ैना से फे गुणस्तर बढ़ैना सुझाव देहल बाट अधिकृत अवस्थी विद्यालय में अभिभावक के उपस्थिति कम देख गिलक ई कार्यक्रम में अलग सुझाव विद्यालय अनुसरण करती अभिभावक संघ अंतरक्रिया लगायत के कार्यक्रम कर सुझाव देहल बाट शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुमन चौधरी के अध्यक्षता में हुईलक कार्यक्रम में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष आशा चौधरी विद्यालय के विकास में सको अभिभावक हुकर ध्यान देह पर्ना बटैल बाट कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक अनिता चौधरी ओ रेखा नेउपाने सम्मान कैगिलबा कलसे विद्यालय में प्रथम दिव्या चौधरी ओ और कक्षा में प्रथम द्वितीय ओ तृतीय हुईना विद्यार्थी उक्रेन पुरस्कार प्रदान कैगिलबा शिक्षिका रूपा चौधरी से संचालन करल कार्यक्रम स्वागत विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजाराम ढकाल करल खोज खबर में जनजागृति मावि सीतापुर में इंदिरा चंद्र छात्रवृत्ति वितरण लगायत के खबर पलिवा सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो
2: बेला
1: त्यो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ, कस्तो गाह्रो हुन्छ। पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ, के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन, त जान्नु पर्यो जस्तै लाग्छ।
2: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी, 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
6: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना। टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुरको 15औं वार्षिक तथा 5औं चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टिकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलाली।
0: जनजागृति मावि टिकापुर 2 सीतापुरमा इन्दिरा चन्द्र छात्रवृत्ति वितरण कैगेलबा चन्द्रसिंह भट्टराई के अमेरिका मधल छावा परविन भट्टराई ओ पटोहिया पुनमाया व्यञ्जनकाल भट्टराई के सहयोगमा विगत 5 वर्ष से विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण हुइटी आइलबा। यी वर्ष कक्षा 10 के 4 थो हो, कक्षा 12 के 4 कै के 8 जना विद्यार्थी वितरण कैगिल्बा। यी बेला के छात्रवृत्ति कक्षा 10 के विद्यार्थी लक्ष्मी चौधरी, सानु भूल, निधि शाही, अमिषा चौधरी हो। कक्षा 12 के विद्यार्थी मीना परियार, लक्ष्मण कुंवर, निर्मला भाट, रेणुका कुमारी, तिखत्री वितरण कैगिल्बा। छात्रवृत्ति पौया विद्यार्थी 12 महिना के अभिभावक सहयोग शुल्क बराबर के रकम, 2 थान स्कूल पोशाक, 1 जोर जुत्ता व स्टेशनरी प्रदान कैगिल्बा। इन्दिरा चन्द्र छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संस्थापक चन्द्रसिंह भट्टराई के अध्यक्षता में हुईल कार्यक्रम में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष माघुराम चौधरी, छात्रवृत्ति पैना भारी बाट हुईलक बटैती, बाल बालिका हुक्रहीन अध्ययन में ध्यान देह अनुरोध करल बाट। छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में बोल्टी पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री समेत रहल भट्टराई, बाल बालिका सपना द्याखपना बटैती, सपना द्याखल पाछ पूरा हुईना बटैल बाट। वहां पढ़ाई में रूचि हुईलक विद्यार्थी, विद्यालय नियमित ऐना आघ बधक लाग ढेर जहीन के सहयोग चाहना हुईलक मार, पढ़ाई में रूचि हुईलक बाल बालिका हौसला मिलस कै के छात्रवृत्ति देना कैगिल बटैल बाट। विद्यालय में विगत 5 वर्ष से इंदिरा चंद्र छात्रवृत्ति वितरण हुई आयलबा। भट्टराई अस्तहे कार्यक्रम जनता मावि मुनुआ मफे करना तैयारी करल बाट। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुक्ति प्रसाद भंडारी, बाल बालिका के अध्ययन और शैक्षिक विकास में छात्रवृत्ति सहयोग मिलती रहल बटैल बाट। कार्यक्रम में एसई 2082 में टीकापुर के सामुदायिक विद्यालय में उत्कृष्ट नतीजा आन सफल हुई लकति शिक्षक हुक्रहीन समेत सम्मान कैगिल बा। कार्यक्रम शिक्षक हिकमत बुढ़ा संचालन करल रह। कार्यक्रम में व्यवस्थापन समिति सदस्य जगन्नाथ रिमाल के समेत उपस्थिति रहल रह। टिकापुर नगरपालिकामा 27 जना रसुवा बाढ़ी पीड़ित राहत वितरण कैगिल्बा। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलाली से संकलन करल उक्त राहत सामग्री काल टिकापुर के रसुवा बाढ़ी पीड़ित के परिवार वितरण कैगिलक टिकापुर नगरपालिका वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी जानकारी देहलबाट। खोज खबर में बचल खबर परिवार सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
7: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
8: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
7: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाए।
9: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
10: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
11: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छुटे।

0: भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: आप बचल खबर। टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओ ओम कृष्ण अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर प्रणाली टिकापुर बीच स्वास्थ्य सेवा तथा सहुलियत सेवा प्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता हुल बा। सम्झौतामा जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के ओर से संस्था के अध्यक्ष निरपराज भण्डारी तथा अस्पताल के ओर से अस्पताल के प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण प्रसाद उपाध्याय बजगाई हस्ताक्षर करल बाट। स्वस्थ सदस्य समृद्ध समुदाय कना अभिप्राय के साथ आकाल एक कार्यक्रम का बीच ऊ समझौता पत्र में औपचारिक हस्ताक्षर कैगिल हो। ई समझौता एक वर्ष के लाख कैगिल ओ वार्षिक रूप में समझौता नवीकरण हुईती जैना द्विपक्ष बीच सहमति फे हुई बा। समझौता संग कैलाली के टीकापुर नगरपालिका जानकी व जोशीपुर गांवपालिका तथा भजनी नगरपालिका क्षेत्र में बसोबास करना सहकारी के 1400 ढेर शेर सदस्य तथा हुकन के एक का घर के आश्रित परिवार के परिवार हुकर प्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित हुईना हुईल बाट। समझौता अनुसार सहकारी के सदस्य तथा हुकन के घरक परिवार ओम कृष्ण अस्पताल से सेवा लिहेबेर न्यूनतम 10 से अधिकतम 20% सम विशेष छूट पैना हुईल बाट। अस्पताल बेदमहेन भर्ना आईसीयू एनआईसीयू लगायत धेरन प्रकार के जटिल तथा सामान्य शल्यक्रिया ल्याब परीक्षण भिडियो एक्सरे तथा अस्पताल के आपन फार्मेसी से औषधि खरीद कर बेर टोक गैलक सहूलियत छूट उपलब्ध करुया बाट। अस्तें के ओपीडी दर्ता तथा एमबीबीएस चिकित्सक परामर्श शुल्क अधिकतम 150 केल कायम कैगिलबा कलसे नियमित फॉलोअप परामर्श पूरा रूप में निःशुल्क रहना व्यवस्था मिलागिलबा। ई सहूलियत सुविधा उपभोग करकलाक सेवाग्राही हुकर अस्पताल के शुल्क भुगतानी करना आग्रह जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी से जारी करल आधिकारिक शेर सदस्य परिचय पत्र वा संबंधित कार्यालय के सिफारिश पत्र भर पेश कर पर्ना बा। समझौता पत्र में हस्ताक्षर पश्चात समझौता के पूरा कार्यान्वयन के पूर्ण कार्यान्वयन के प्रतिबद्धता व्यक्त करती अस्पताल के प्रबंध निर्देशक कृष्ण प्रसाद उपाध्याय बजगाई समुदाय में आधारित सहकारी के सदस्य हुकैन सहूलियत दर में गुणस्तरीय सेवा देह पाईबेर खुशी व्यक्त करती। पूर्वी कैलाली में अत्याधुनिक प्रविधि उपकरण और विशेषज्ञ चिकित्सक हुकन के प्रत्यक्ष निगरानी में स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती रहल अस्पताल से सदस्य हुकर वास्तविक राहत महसूस करना विश्वास व्यक्त करल बाट। सहकारी के संस्था के व्यवस्थापक छविलाल जैसी आपन सदस्य हुकरैन वित्तीय कारोबार के अलावा सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवा में समेत प्रत्यक्ष टेवा पुगैना उद्देश्य से अस्पताल संघ सहकारी कैगिलक बतैती समझौता से पैना स्वास्थ्य सहूलियत के भरपूर लाभ उठाई सकू सदस्य तथा हुकन के परिवार आग्रह करल बाट। समझौता अनुसार दुई संस्था के संयुक्त पहल में समुदाय स्तर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मातृ शिशु कल्याण तथा धेरनक स्वास्थ्य सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत संचालन कैजिना हुई बा। ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता में निरंजन विष्ट नियुक्ति कैगिल बा। मुख्यमंत्री खगराज भट्ट के सिफारिश में आज प्रदेश प्रमुख नजीर मिया वहां मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त कर रखुट। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय के प्रवक्ता उपसचिव शेखर कुमार ओकाया से जारी विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री भट्ट के सिफारिश में नेपाल के संविधान के धारा 160 के उपधारा 2 बमोजिम विष्ट मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त कैगिलक उल्लेख कैगिल बा। दार्चुला के शैल्य शिखर नगरपालिका 9 निवासी विष्ट लम्बा समय से अधिवक्ता के रूप में वकालत करती आयल बाट। यह समाचार संघ खोज खबर ओराइल अंतिम में जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक एक फ्यारा फिर से कांग्रेस सभापति में गगन कुमार थापा विजय और पदाधिकारी हुकन के भर आज दोपहर से मतगणना शुरू होना। समन्वय के अभाव में ढेर समस्या थाती रहल सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार के मंत्री व स्थानीय तह के गुनासो समन्वय हुई पन्ना सरकार लहुकन के सुझाव। मुक्त कमैया आधारभूत विद्यालय विजयनगर के सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई विद्यालय के शैक्षिक उपलब्धि 68.79%। ओ जनजागृति मावि सीतापुर में 8 जना विद्यार्थी उक्रेन इंदिरा चंद्र छात्रवृत्ति वितरण कै गेल। लिटा अब खोज खबर रह प्राविधिक मित्र दीपेन्द्र भंडारी भट्टराई धन्यवाद देती। अब कई खोज खबर से मई छपिलाल चौधरी फिर विदा भेटू। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
3: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में बच्चा देखि बुढ़ा सम्मा टाउको देखि घुड़ा सम्मा को उपचार
4: टीचिंग हस्पिटल एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फैमिली फिजिशियन डाक्टर सरोज खनाल बिरामी को जांच तथा उपचार हुँदैछ।
3: आरोग्य मेडिकल में पाइने सेवाहरू
4: दीर्घ रोगी उच्च रक्तचाप मधुमेह थायराइड दम सीओपीडी
3: नवजात शिशु देखि वृद्ध सम्मको संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा
4: बाल बालिका को स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
3: महिला का समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्था को जांच
4: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायत को उपचार
3: आकस्मिक रोग को प्रारंभिक उपचार व्यवस्थापन
4: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
3: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
3: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 63 77 72।
5: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
6: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
7: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
6: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
7: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
8: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9584 89213 इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लबाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरास बातें ये बुरहक ढंग कबू पसल छान करना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बर रही थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जेबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिकला झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: लैंगिक हिंसा प्रभावित गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
4: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
5: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
4: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
5: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
6: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
7: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
6: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
8: पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो नहीं करत का कहीं ना हो का।
8: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बने लाट, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
9: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोपराइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छट्टी तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजिठ का कना हो बाबा फ्यो ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुइति जलम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटा कै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिएरै थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुईन एक आनंद झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
4: एल्विस एल्विरा टेरस में डिजाइन का साड़ी सूट कुर्ती प्लाजा तथान का कपड़ा सुपथ मूल्य में पाइन्छन् एक चोटी सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला
5: एल्विस एल्विरा टेरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाड़ी टीकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ संपर्क नंबर 98117-38-87
6: जापानी इन्सेफलाइटिस रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अत्यन्त जरुरी सूचना
7: जापानिज इन्सेफलाइटिस मस्तिष्कमा संक्रमण हुने लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने भाइरल रोग हो यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ तर धेरै जसो 15 वर्ष मुनिका बाल बालिकामा देखिन्छ
8: यो भाइरस

0: हेलो बहिनी, कता हो? तिमीलाई थाहा छ कि नै, सीजी कम्पनीको वाईवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी रूपान्तर 60 मा उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कतिमा किन्यौ?
1: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 मा किने।
0: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो? 560 मा त ब्लक नम्बर 14 मा रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ। त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि। त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने? 460 मा मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ। त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
1: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टिकापुर कैलाली, संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 9848-40-22-41।
2: आई बुढल्ला, सुन्ठो कि नै? वा नन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उने ना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाका अनला बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाई कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864-41-208 और 9846-39-261
4: दाजु विवाह को तैयारी तो शुरू भयो तर पूजा का सामान कहाँ बाट ल्याउने होला
5: त्यसको चिंता किन गर्छौ बहिनी मंगलेश्वरी पूजन भंडार छ नि त्यही बाट ल्याउला
4: विवाह
5: तथा शुभ कार्य का लागि चाहिने पूजा का संपूर्ण सामग्री माला टीका कलश धूप दीप का साथ ही ज्योतिषी परामर्श तथा संपूर्ण कर्मकांड लगायत आवश्यक सामग्री एक ठाउँमा पाइन्छन्
4: ओहो त्यसो भए विवाह को पूजा को सामान खोज्दै धेरै पसल धाउनै नपर्ने रहेछ नि
5: हो नि बहिनी गुणस्तरीय सामान उचित मूल्य र आवश्यक सामग्री को राम्रो व्यवस्था सबैका लागि मंगलेश्वरी पूजन भण्डार
4: त्यसो भए विवाह को सामान पनि मंगलेश्वरी पूजन भण्डारबाटै लिन जाऊ है
5: अवश्य तपाईँको शुभ कार्यलाई अझ मंगलमय बनाउन एक पटक आउनुहोस्
6: मंगलेश्वरी पूजन भण्डार टिकापुर 4 चौतारी नजिकै संचालक छतराज उपाध्याय सम्पर्क नम्बर 9866-2727-99
7: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय के अनुरोध
8: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनारमे पशु चौपाए नै बान देवी सड़क किनारमे मल वस्तु नै कुरा देवी साथे सड़क किनारमा पशु चौपाए बान के ढुंगा बालुवा गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा लेह पर्ने बा
7: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय लाइकपुर

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आत्मा त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जै भो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल।
3: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
2: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो न अट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न कबू कहुरा घुम जाए त था पाए।
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
5: घरमा बट्टीको सामान चाहिएको थियो, कहाँबाट किन्ने होला?
6: किन टाढा जानु हो दिदी, जमारा पारी पेट्रोल पम्प अगाडि न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर छ नि, त्यहाँ घर तथा पसलका लागि चाहिने विभिन्न विद्युतीय सामानहरू पाइन्छन्।
5: ए हो र, त्यहाँ कस्तो कस्तो सामान पाइन्छन्?
6: त्यहाँ त हाउस वायरिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू, विभिन्न ब्रान्डका तार, एसी, पंखा, हिटर, गिजर, मोटर तथा हाउस वायरिङ सम्बन्धी पाइने एकमात्र न्यू ओम बिजुली भण्डार छ नि।
5: त्यसो भए अब बिजुलीका सामान किन्न अन्त कतै जानै परेन।
6: हो नि, तपाईँलाई पनि घर कार्यालय वा पसलका लागि बिजुलीका सामान चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्।
5: न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर्स जमरापारी पेट्रोल पम्प अगाडि संचालक राम बहादुर चन्द सम्पर्क नम्बर 9848569733 र 9851182446।

0: परिवारमा सबै बिरामी
1: आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदा हुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र
0: कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग
2: त्यो बर्बर बर्बर कराइरहेछ के भएको छ हौ तँलाई
0: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
2: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
3: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
4: साथै हाम्रो यहाँ दैनिक महिला डाक्टर संज्ञा खनाल एमबीबीएस द्वारा बिरामी जाँच तथा उपचार गरिन्छ
3: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरला रोड टिकापुर कैलाली
5: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ
6: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
7: बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
8: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
7: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
8: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
9: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा
10: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846774417
11: अरेल्ला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार मंगलसूत्र चक्की पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन् एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
12: अरेल्ला सुन चाँदी पसल बलभद्र चौक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि सञ्चालक खुमरा सुनार सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347
13: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटाका था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ हो टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाती ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरा से बाटी ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आज तिमी मेरे वरीपरी किन घुम्दैछौ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छड़के तिलहरी बाला चूरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसन का गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25
6: टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको धारा जनानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी एक आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वार्ड नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धारा जडान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ उक्त सहुलियत कार्यक्रममा सहभागी हुन मिति 2083 असोज 1 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म संस्थाको कार्यालयमा धारा जडानका लागि आवेदन दिन हुन अनुरोध छ याद राख्नुहोला पुस 1 गतेपछि सहुलियत कार्यक्रम लागू हुने छैन थप जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर 091-561-449 सम्पर्क गर्नुहोला टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था
7: दाजु विवाहको तयारी त सुरु भयो तर पूजाका सामानहरू कहाँबाट ल्याउने होला
8: त्यसको चिन्ता किन गर्छौ बहिनी मंगलेश्वरी पूजन भण्डार छ नि त्यहीँबाट ल्याउला
7: पाइन्छ त दाजु
8: विवाह तथा शुभ कार्यका लागि चाहिने पूजाका सम्पूर्ण सामग्री माला टीका कलश धूप दीपका साथै ज्योतिषी परामर्श तथा सम्पूर्ण कर्मकाण्ड लगायत आवश्यक सामग्रीहरू एकै ठाउँमा पाइन्छन्
7: ओहो त्यसो भए विवाहको पूजाको सामान खोज्दै धेरै पसल धाउनै नपर्ने रहेछ नि
8: हो नि बहिनी गुणस्तरीय सामान उचित मूल्य र आवश्यक सामग्रीको राम्रो व्यवस्था सबैका लागि मंगलेश्वरी पूजन भण्डार
7: त्यसो भए विवाहको सामान पनि मंगलेश्वरी पूजन भण्डारबाटै लिन जाउँ है
8: अवश्य तपाईँको शुभ कार्यलाई अझ मंगलमय बनाउन एकपटक आउनुहोस्
5: मंगलेश्वरी पूजन भण्डार टिकापुर 4 चौतारी नजिकै संचालक छतराज उपाध्याय सम्पर्क नम्बर 98-66-27-27-99

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्झेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनाउक्रा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन म www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो ओ नेपाली पात्रो मफे सुन्ती रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से गेटा के शिक्षण अस्पताल में 52 प्रकार के सेवा दैनिक 450 बिरमेन के उपचार जनकल्याण सहकारी के 15 साधारण सभा मित बेई होक काम करो शेर सदस्य के सुझाव ओ सुदूरपश्चिम सरकार आसफे कर निस्याकल बजेट सार्वजनिक प्रदेश सभा बैठक काल बैठना जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाके 15 साधारण सभा विभिन्न निर्णय पारित कलबा टीकापुर नगरपालिका भजनी नगरपालिका जानकी गाउँपालिका ओ जोशीपुर गाउँपालिका कार्यक्षेत्र हुलक जनकल्याण मन 1428 जनशेर सदस्य रहलक 1,43,60,005 रूपियाँ शेयर पूँजी रहलबा 8,12,50,000 बचत संकलन कलक सहकारी 60,90,00,000 रूपियाँ लगानी करलबा सभा चालू आर्थिक वर्ष के लाग 1,33,25,000 रूपियाँ के अनुमानित आय व्यय पारित कलबा शनिवार हुलक सभामा अध्यक्ष निर्फराज भण्डारी प्रस्तुत करल हुलक संचालक समिति के प्रतिवेदन सहकारी के आर्थिक वर्ष 2082-83 के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित हुलबा सहकारी शेयर सदस्य कन्ह 2% लाभांश वितरण कना ओ संस्था के आन्तरिक कार्यविधि परिमार्जन कना निर्णय कलबा सभामा लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक रजनी शाही प्रस्तुत कलक प्रतिवेदन पारित हुलबा सभा के उद्घाटन सत्र में बोल्टी टीकापुर नगरपालिका के आर्थिक विकास समिति के संयोजक एके प्रसाद न्यौपाने सहकारी उद्देश्य परक होकर ऋण लगानी कर पर्ना लगानी कलक ऋण तीर निसेकना शेयर धनी के धितो लीलाम कर्क ऋण असुली कर पर्ना अवस्था आय नै हुइना बटुलाबाट चालू वर्ष मन सकुन्से पहिलो साधारण सभा कलकमा न्यौपाने जनकल्याण सहकारी के प्रशंसा फेकर्लबाट संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष बद्री प्रसाद भट्टराई आफ्नो अध्यक्ष हुइबेर संस्था के चिया फेनी खैलको उत्कृष्ट सहकारी हुलक स्मरण कर्ती ओ इज्जत जोगाई पर्ना ओ शेर सदस्य के चित्र बुझाई पर्ना बटुलाबाट संस्थापक अध्यक्ष गणेश बहादुर साउटफे जनकल्याण सहकारी 15 वर्ष में धीर उपलब्धि हासिल कलक वर्षे उपलब्धि रक्षा कर सकु शेयर सदस्य सचेत रहपना सुझाव देलाबाट सहकारी के अध्यक्ष निर्पराज भण्डारी सहकारी स्थापना हुइना के सचिव होक काम कलक स्मरण कर्ती अध्यक्ष हुइलक 4 वर्ष बिटलक फे पट्टा हुइलक बटुलाबाट 39,00,000 भाका नन्लक ऋण हुइलक सहकारीमा 6,16,000 खुट नाफा हुइलक देगिल्बा साधारण सभामा साधारण सभाके खर्च लेखा परीक्षण शुल्क संचालक समिति के भत्ता हो भाका नन्लक ऋण असुलीमा ध्यान दिएपना सुझाव देगिल्बा सहकारीमा सात जना सम्मानित फे हुइलबाट सहकारी के उद्घाटन सत्रमा विभिन्न क्षेत्र के 7 जना सम्मानित कैकिल्बा सहकारी के उत्कृष्ट बचतकर्ता टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 के इन्द्र विष्ट टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 के चुनकानी थारू टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 के भोजराज ढुंगानाहना सम्मान करगिल्बा वस्तका उत्कृष्ट ऋणी के रूपमा जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 के मानबहादुर थारू और टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 के भजनी देवी विकह सम्मान कैगिल्बा वस्तका शेर सदस्य ज्ञान बहादुर चौधरी के छावा सम्यक चौधरी गैलक वर्ष के एसी परीक्षामा उत्कृष्ट अंक प्राप्त करना ओ सरस्त प्रसाद लामसाल के छावा नितेश लामसाल कक्षा 12 के परीक्षामा उत्कृष्ट अंकलन लक्मन सम्मान के गिल्बा कार्यक्रममा सहकारी के व्यवस्थापक छपिलाल चौधरी बचत सम्बन्धी सन्देश प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कैलाली के गेटा स्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत के शिक्षण अस्पताल मना 52 प्रकार के स्वास्थ्य सेवा संचालन मना आइलबा अस्पताल मना दैनिक औसत 450 जना बिरामीन बहिरंग सेवा ओपीडी लेटी रहलबाट विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डाक्टर भीमबहादुर चन्द के अनुसार अस्पताल मा 60 प्रकार के सेवा उपलब्ध करेना योजना बा वाकरपा छ 52 प्रकार के सेवा संचालन मा आशेकल वकलसे बाकी सेवा संचालन के प्रक्रिया मा रहलबा अस्पतालमा आकस्मिक मेडिसिन सर्जरी हार्टजनी मुटुरोग न्यूरो छालारोग नाक कान तथा घाँटी आँखा दन्त मानसिक स्वास्थ्य स्त्री रोग बालरोग लगायतकी सेवा उपलब्ध भए वस्तक नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष आईसीयू बाल सघन उपचार कक्ष पीआईसीयू सघन उपचार कक्ष आईसीयू शल्यक्रिया कक्ष ओटी तथा विभिन्न वार्ड व क्याबिन के सुविधा फिर संचालनमा रहलक चन्द बटुलबाट अस्पतालमा रेडियोलोजी सेवा समेत संचालनमा रहलबा एमआरआई सेवा संचालन कना योजना रहलक वहाँ जानकारी देलबाट रक्त संचार सेवा ब्लड संचालन के प्रक्रियामा नरहलबा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आजफे बजेट सार्वजनिक कर असफल हुलबा बजेट प्रस्तुत के कार्यसूची धरती आजफे बिहान 8 बजे बोलागिलक प्रदेश सभा बैठक दिनका 4 बजे बैठना कैकन सार्गिल रह तर बजेट सार्वजनिक के लागि आवश्यक तयारी निपुगल पाछ बैठक काल बिहान 9 बजे के लागि सार्गिलक प्रदेश सभा सचिवालय के सूचना अधिकारी तारा कुमार जोशी जानकारी देलबाट बजेट के समयमा मन्त्री हुक्र बीच नै विवाद हुल पाछ बजेट लन्ना तयारी अनिश्चित बन्ती कैलक हो अर्थस्य लगभग तयार कर सेकलक बजेटमा सरकारको नेतृत्व गर्दिरहलक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्री हुक्र नै असन्तुष्टबाट हुक्र बजेट बाटफाटमा असन्तुष्ट जनैलक हुइट बजेट लान निस्याका बेर प्रदेश सरकार 3 महिना थेसे बजेट विहीन बा यसै आग सर्वोच्च अदालतके कारण देखाउ आदेश बजेट प्रक्रिया रोकिलक बटवागिल रह तर शुक्रबार बजेट विवादमा सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेश दिए अस्वीकार करल अदालतके यी निर्णय किसँग प्रदेश सरकार बजेट लन्ना डगर खुलल रह वस्तक सत्तारूढ दलके प्रदेश सदस्यौकन के बैठकमा काल बिहान बजेट सार्वजनिक गर्न सहमति हुलबा खोज खबरमा एक घरिक विश्राम पाछैनी निवाटी सुन्तिरै सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इसारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
3: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्कार पोलिक्लिनिक प्राली टिकापुरमा
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
4: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
5: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
4: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
5: ईसीजी सेवा
4: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
4: फोन नम्बर 98484 27359 र 98442 73 59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
6: सुन्नुहोस् न यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्चाना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
7: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
6: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
7: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
6: ल अरूलाई पनि भनौँ है।
7: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
5: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल, बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मिया युवा विद्यार्थी विदेश मोह त्याग गर्न स्वदेश मन अवसर ख्वाजापना बटुलाबाट कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिका स्थित घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसमा मधेसी आयोग आयोजना कलक लोकसेवा परीक्षा तयारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्ती प्रदेश प्रमुख मिया स्वदेशमा बैठक फे मजा अवसर प्राप्त गर सेक्ना बटुला फुट पाछक समय युवा विद्यार्थी मन विदेश जैना मोह भर्ती गैलक उल्लेख गर्दै उहाँ दक्ष जनशक्ति पलायन हुना मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुलक बटुलाबाट विद्यार्थी हन आफन क्षमता पहिचान गरेको अध्ययन ज्ञान वसी विकास मन ध्यान दिए आग्रह गर्दै उहाँ निरन्तर मेहनत ओ आत्मविश्वासकै सँग प्रतिस्पर्धामा उत्रपना मन जोड़ देलबाट मधेसी समुदायकै सशक्तिकरणकै लागि स्थापना हुलक मधेसी आयोग मधेस मन कलक निहोकन सुदूरपश्चिम लगायत अन्य क्षेत्रकै विद्यार्थी समेत समेटकन कार्यक्रम सञ्चालन करलक हो। कार्यक्रममा 200 विद्यार्थी सहभागी रह कार्यक्रममा लोक सेवा आयोगके परिचय परीक्षाके तयारीकना तरिका सरकारी सेवामा प्रवेशके अवसर तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतके विषयमा प्रशिक्षण दिगिल रह मधेस आयोगके सदस्य रेणु देवी शाहके सभापतित्व तथा प्रदेश प्रमुख मियाके प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगके उपाध्यक्ष गोकर्ण प्रसाद प्रकाश भट्ट ओ घोडाघोडी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख खड़ग बहादुर राउत विशिष्ट अतिथिकै रूपमा सहभागी रह उद्घाटन सत्रमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष भट्ट नीतिगत तथा योजनागत विषयमा जानकारी गराइल रह। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल निजी ओ टुभालुमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी उच्च स्तरीय प्रिकोप लिडर्स इन्भेट मन सहभागी हुनाकै सँग अस्ट्रेलियाकै औपचारिक भ्रमण सम्पन्न कैकन स्वदेश फिर्ता हुलबाट भ्रमणकै क्रममा अस्ट्रेलिया नेपालमा हाल गैलक विनाशकारी बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रकै राहत पुनर्लाभ तथा पुननिर्माणकै लागि थप 15 मिलियन अस्ट्रेलियन डलर अनुदान सहायता घोषणा कलबा याकरसँग बाढ़ी विपद प्रति कार्यकै लागि अस्ट्रेलिया घोषणा कल कुल सहायता 26 मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुग्लक मन्त्री खनाल जानकारी गराइलबाट स्वदेश फिर्ता पाछा भ्रमणकै उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै मन्त्री खनाल नेपालकै जलवायु संवेदनशीलता हान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर न्यायचित जलवायु वित्तीय परिचालन गर ओ अस्ट्रेलियासँगकै द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप सुदृढ बनाई भ्रमण महत्वपूर्ण रहलक बटुलाबाट ऐना नोभेम्बरमा टर्कीकै अल्टा ल्यामन आयोजना हुना जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिके 30 सम्मेलन 9COP310 के लागि राजनैतिक सहमति निर्माण गर्न तथा विश्वव्यापी जलवायु एजेण्डा हान आग बढ़ाउन उद्देश्य लिएको अस्ट्रेलिया फिजी ओ टुभालुके सरकार प्रमुख हुकनके निमन्त्रणामा मन्त्री खनाल भ्रमण गैलकुरल भ्रमणके क्रममा मन्त्री खनाल यही अक्टूबर 6 फिजीके नाडीमा आयोजित प्रिकोप लिडर्स प्लेनरी हान सम्बोधन गर्दै हिमाली तथा प्रशान्त महासागरके टापु राष्ट्र हुँक्र जलवायु परिवर्तनके कारण सम्मान प्रकृतिके जोखिम सामना गर्तिरलक उल्लेख गर्ल उहाँ हिमनदी पग्लना व समुद्री सतह बढ़ना समस्या एक विश्वव्यापी जलवायु संकटके परस्पर मन जोर गिलक पक्ष हुलक बटुटी हिमाल थेसे समुद्र समूहके रास्ताबीच सहकार्य आवश्यक रहलक मन जोर दिलबाट सम्बोधनके क्रममा मन्त्री खनाल नेपालके भोटीकोशी जलाधार क्षेत्रमा ऐलक बिना कारी बाढ़ी आन हिमाली सुनावी के संज्ञा देती जलवायु परिवर्तन में न्यून योगदान रहलक नेपाल जसिन मुलुक वाकर गंभीर मूल्य चुकाईपलक बटुलाबाट कोप 31 के लागि नेपालकै चार प्राथमिकता मन प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनाल विश्वव्यापी तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित धरना लक्ष्य प्रतिके प्रतिबद्धता ऋणके भार नै ठप नाकेका अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त हानि तथा नोक्सानी कोषके प्रभावकारी परिचालन ओ सगरमाथा थिसे समुद्रसम्म साझेदारीके विकास मन जोर देलरल खोज खबरमा फेरफेर विश्राम पाछैनिनीबाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
8: आइहो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
9: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिलबो नि करत का कैन हो का
8: मिस्तरान बर्दन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए त था पाए
10: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
12: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
11: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
12: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार
11: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा भारतकै लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डे उच्च स्तरीय भ्रमण हुन नियमित बनिनेमा प्रतिबद्धता जनाइनबाट संसदीय सुनाई समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनामा असिन उल्लेख गर्नुभयो प्रस्तावित राजदूतकै कार्ययोजना सुनाई समिति सदस्य हुकन वितरण करगिल बा वितरित कार्ययोजना मन नेपाल ओ भारत बीच उच्च स्तरीय भ्रमण मैत्रीपूर्ण विचार आदान प्रदान तथा वार्ता नियमित बनाक द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न योजना रहलबा जहाँ मन दुनु पक्ष से हुइना नियमित उच्च स्तरीय भ्रमण कराई प्रयत्नरत रहन प्रतिबद्धता फिवा कार्ययोजना मन उल्लेख भइल अनुसार दुनु पक्ष हुइना नियमित उच्च स्तरीय भ्रमण मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श ओ वार्ता आपसी मित्रता सुदृढ कर तथा दुई देश बीचके सक्कु समस्या समाधान के लागि उत्कृष्ट माध्यम हिलबा आरके संग खोज खबर ओराइल अन्तिममा जेती खबर के मुख्य शीर्षक फेर्से गेटाकी शिक्षण अस्पतालमा 52 प्रकारकी सेवा दैनिक 450 बिरामीनकी उपचार जनकल्याण सहकारी के 15 साधारण सभा मिड बे हो काम कर शेष सदस्य की सुझाव व सुदूरपश्चिम सरकार आज फे बजेट लान सार्वजनिकरण निश्याकल प्रदेश सभा बैठक काल बैठना दिताबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार नेपाली भाषा मन 6 बजे खोज खबर सुन सिक्दी आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मैं गीताफी विदाई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
13: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छुटे।

0: लभ यु टु हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।
2: आई बुढल्ला सुन्दो कि नै वनन्दे भोज आगिनी न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उने ना पट्टा नि पैना त
3: अधि गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे कि कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई।
4: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 ओ 98486 39261।
5: जान छै उडने चरी दिनरात भौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी।
6: झल्को आउँदो बाह्रै मास दिनकाटु म क्यारी बाटो हेरी बस्याकी छ घर मेरी प्यारी।
5: एक डाली बाजगुर आउँछको एक डाली साजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको।

0: आई बुढल्ला सुन्छ कि नै वानन्दे गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
1: अनि गहना बनाइन त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 और 9846239261
2: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागी विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइने का साथ है थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ
3: संचालक आरती चौधरी संपर्क नंबर 9864170483

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: Ready.
1: Wow, thank you. You sound like अच्छे सुगंधित बनाओ तो मंगलदीप सेंट 3-in-1 के साथ.
0: I love the scent.
1: I love it too. हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ.
0: मंगलदीप सेंट 3-in-1 perfume like fragrance.
2: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू.
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो. यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए.
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए.
4: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा. मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा.
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417.
6: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलाली को 9 वार्षिक साधारण सभा होने बारे को सूचना. साना किसान का लागि लगानी ल्याउँछौं सुनौलो बिहानी. आउँदै गरेको बड़ा दशैं शुभ दीपावली नेपाल सम्बत एवं छठ पर्वको अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयरधनी शुभचिन्तक पत्रकार समाजसेवी एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यही मिति 2083 साल कार्तिक 8 गते आइतबारका दिन टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा हुन गइरहेको श्री जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौं. स्थान टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहाल समय बिहान 10 बजेदेखि आयोजक जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टीकापुर कैलाली. सम्पर्क फोन नम्बर 0915606141 मोबाइल नम्बर 9842386713.
7: जान छै उडन चरी दिनरात भौतारी आइ गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी आइ गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी.
8: झल्को आउँदो बाह्रै मास दिन काटु म क्यारी बाटो हेरी बसेकी छ घर मेरी प्यारी.
7: एकडाली बाजगुर आउँछको एकडाली साजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको.

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो।
1: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या।
0: यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
5: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
6: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? 500 सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
7: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो कन घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्ट फे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
8: यूपीवीसी ब्रांड के मौका, द्वार, पार्टीशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो, घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेष हुईलक मौका, द्वार, पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार, टीकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।
10: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091560095 ओ मोबाइल नंबर 98 48 42 73 59।
11: कॉफी रेडी।
12: वाव, थैंक यू। यो सासलाई अच्छे सुगन्धित बनाउँछु मंगलदीप सेंट 3-in-1 के साथ।
11: I love it too.
12: हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
11: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।
13: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: दाई बेड भूक लगता खाजा बाकी नहीं ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो से अकल बाजे आप हली भुआस कर दिया परल है समय में भुआस कर दिल से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फे सुननी पड़ना
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पढ़ना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर देखा मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू दीदी मई चाह ये बाल विवाह कर नी चाहू ये बाल विवाह नी करन दीदी
3: शारीरिक व मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से दाई व बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकर उ हिंसा के शिकार बन सकर वही है विद्यालय छाड़ पड़ना बाध्यता हुई से थीस उ रोजगार फिर नहीं पाए वो गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन करैला से 3 वर्ष सम कैद व 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकर वो असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका ओडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा के उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लगाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनंद झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर एक कैलाली को आयोजना में 15 नियमित महाधिवेशन 2083 अंतर्गत प्रदेश क ख र क्षेत्रीय अधिवेशन यही मिति 2083 असोज 26 गते बिहान 11 बजे टीकापुर स्थित सिटी हल में हुने भएकोले संपूर्ण कांग्रेस का क्षेत्रीय प्रतिनिधि नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिंतक में उपस्थिति का लागि अनुरोध छ।